0: नामक निरंकार
1: शंख जाप शंख भाव शंख पूजा शंख तप ताऊ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
1: भगत गुण ज्ञान विचार संख सतीय संख दातार
0: असंख सूर

0: एक बार
1: भाव साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
0: भरिए हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतरस कहे
1: प्रीति का पड़ होए दे साबुन लिया हो तोए
0: भरिए मत पापा के संग।

0: सकै कोई।
1: खाए का खन पायो जाने जीतियां मुहि खाए।
0: आपे जाने आपे दे आखे सेपे के इके।
1: बख्शी सब साला नान पातशाही पातशाहु।
0: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी मूल भंडार।
1: मूल ले जाए मूल पाए।

0: नमो जंतर जंतरंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
1: सदा सर्वं सर्वपर्णाशिनोपि रूपे समस्तल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा ब्रह्मकर्ता अदो उर्धर धंग गंग ओग हर्ता
1: परम परमेश्वर पुरुष पालन सदा सर्वदा दाता दयालं
0: अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी
1: शांतल पीता पे
0: है प्रभु है अचू है देश है अपेश है पुचंग पयात शंद
1: वाद्य नंदी स्वरूपे नो सर्वमान्य समस्त निदाने
0: नमस्तंग निधाफे नमस्तंग परमाते नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे
1: नमस्तंग काले नमस्तंग पाल नम सर्व देशे नम सर्व पेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे
1: प्रीते नमो प्रीति प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
1: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तिरपंगी अनंगे
1: नमो जीवंग नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तंग प्रसजे
0: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग पन्नासी सदा सर्वदार सिदंग निवासी चरपट शांत व प्रसाद
1: अमृत कर्मी अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगी
0: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
1: दाता सर्वंग ज्ञाता सर्व भाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
1: सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: कृपाल शांत व प्रसाद
1: आद रूप नाद मूर्जोन पुरख पार
0: सर्व मान तिर मान देव पेवाद उदार
1: बालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
0: जतर तर विराज ही अब दूत रूप प्रसाद।

0: चक्कर काले
1: चक्र पास चक्र वास चक्र माने अत्र चक्र दाने
0: चाचरी शांद
1: सतरण मित्र न भरुंग न पितर
0: न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये
1: सतरण मित्र परि न पवित्र
0: परदिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत व प्रसाद कथते
1: आशे देश के आप जो पिसे के आगन कर्म के आपंज परम
0: आप जो लोग कह के आदित सो कह के अवधूत भरने के वह भूत करने
1: प्रभा धर्म तुझे के आशोक वर्ण सर्वापर्ण।

पात्र पाए जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भाया पार जात गोपी लाया बिंद्रावन मैं रंग किया कल मैं बेद अथुर बन हुआ नाम खुदाई लो पहया नील।

प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवाण, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रदान, प्रभु को सिमरे से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा बिन

नानक पूजै हर हर देवा। हर हरजन कै मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हरजन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन वरना जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपैर, कपत प्रकट नहीं शपैर, की भक्त मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे।

छोड़ झूठ संग मचै, जो शरणा सुवस्त्र कर मान रहे हुण सुदूर प्राण छोड़ जाए, तिसका शर्म करे संग सहाय, तिस पर हर है चंदन लेप उतार है, तोय गर्त प्रीत भस्म संग होए।

दस वस्तुले पाछे पावे एक बस कारण बे खोट गवावे एक बिना दे दस भी हेर ले तो मूड़ा को कहा करे। जिस ठाकुर से ना ही चारा था को की जा साधन नमस्कार आ जा का मन ला क्या पर मीठा सर्व सुख था उमन उठा जिस ने अपना को मनाया सर्व तो नानक ने पाया। अग्न साप नि दे रास खात पीर्थ बरतेन दुलास अपनी ईमान किश बहुर सौ ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त तिसाग्या राखे प्रभ की आज्ञा मन है माथे उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया की हीत सर पर होवत जान अनेत। बिरखी छाया सुरंग लावे ओ बिन सहु मन पछतावे जो दिसे सो चलन हार लपटरो ते अंधार बटावु सो जे लावे नेह तक वत ना आवे केहि मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या मै ममता माया मिथ्या राजो मन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती स्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया भेखस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आप सुप्रकृत गुमान अस्त्र प्रसाद की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या अस्त पर धर्म को है मिथ्या मिथ्या नेत्र पर त्रैरुपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चन पर बेकार कुत्ता मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तानी पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की यार जा साज बिना क्यों वसूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो कृति जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपण के निरार्थ दाम। धन धन ते जंजे

जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे माना। आपे आप करतन बेरा किसे दूर जुनावत किसो बुझावत ने राव भाव सियानक सब ते रह। तो सब किस जाने आ तुम की रह। तो जिस भावत सिलाई लड़ लाए।

साजना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल हो तो साध संग मल सगली को तो सर्ग संग मिटे अभिमान सर्ग संग प्रकटे सो ज्ञान सर्ग संग पूजे परम नीरा साध संग सब उतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साधक सुबह परमाय सुमानी साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल है साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब वीरेन साधक संग नोर बैन साधक संग कतू धावै साध संग सत मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बिगा पैर साधक संग नाई को मंदा साध संग जने परमानंदा साधक संग नाई ताप साधक संग तरे सब बाप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साधु प्रभु बने आई साधक संग न कबूता आवै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लह साधु के संग अजर सह साधक संग बस थान उच्च साधु के संग महल पहुंच साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मित कुटुंब निस्तार।

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमललेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर जेख ज्यो वसुद्धा कौ खोद कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाओ नानक जो भाव का सह सुभाव।

0: ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश हो जैसे तरु प्रकाश हो, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाए अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी सृजन भय नणगिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते किस बरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार वाह, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी क्या हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी क्या कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसया प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुखदाय निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह चंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रयाप, ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायदा करे, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, उरधार है जो अंतर नाम सर्व मैं वेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक अपरस सगल निस्तारे अष्टपति, मिथ्या नाही रसन परस मन में प्रयत्न रंजन दर्श, पर तेरे रूप न पेख नेत्र सत प्रत सन संग, करण सुने काम की निंदा सब ते जाने आप को मंदा, गुरु प्रसाद विखे पर हरे मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच जोग ते रहत, नान कूड़ मदे कुआ सा परस, बैसन सोच सुपर सो प्रसन्न, विष्णु कुमार पिंड कर्म कर तो ने कर्म, तिस बैसनों कर निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचा, केवल भगत कीर्तन संग्राचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब प्रोहत कृपाल, आप दृढ़ वरण नाम जपावे, नानको बैसनो प्रमुख पावे, भगवती भगवंत बहुत कारंग सगल त्यागे दुष्का संग, मंत बिंस सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पाप अमल होवे, ते भगवती की मत तुम होवे, भगवंत की डाल करण तनीत मंत नर पवसन प्रीत, हर के चरण हृदय वसाव, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रभु दे, राम नाम आत्म सोदे, राम नाम सारस पीवे, सुपंड ते दे जग उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय वसावे, सो पंडित फिर जो न आवे बीज पावे, सो पंडित फिर जो न आवे राम नाम सारस भी, उस पंडित कह दे जग दीवे, हर की कथा हृदय वसावे, सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे, मूल सुख मैं जाने असोल, चौवरणा को देव देश नान कुछ पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरणा में जपे को नाम, जो जो जपै तिसकी कत होए, सासंग पावे जन कोय, कर कृपांतर उतारे, पास प्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्व रोका उकत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहो जुगत किते ना पाई धर्म, नानक किस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरि आया, दादे संतन पाए तिन पाए, सदा निक निक प्रयार जान, सो दास दर की प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुमिताव, जीवन मुख सो कहा, तैसा हरक तैसा सोग, सदानंद तैना वियोग, तैसा सुरण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी विखट, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जुगत साई जुगत, नानक पुर कहिए जीवन मुक्त, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿ ਜਿਦ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਸੋਈ ਫੁਣ ਹੋਗ।

कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट वेद के स्रोत है, कई कोट विसर होते, कई कोट आत्म ते अंतर है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नव तन नम त्याव नानक करते कंतन पाव, कई कोट पय मानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिघात निकोर, कई कोट पर द्रव कुहिरा, कई कोट पर दुखना करे, कई कोट माय शरमाय, कई कोट पर दे शरमाय, जित जित लाभ तित तित लगन, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सी जति योगी, कई कोट राज रसोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र विखण बजाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट दे सुमंडल, कई कोट सचिर सुरण खेत्र, कई कोट दे दानिंद्र सिर छात्र, सगल समग्री अपने सुतार, नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तार, कई कोट राज साम सातक, कई कोट वेद ब्रह्म समृत सासत, कई कोट कीरत संबंध है, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट के चर जीव है, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव है, कई कोट जक निर पिशाच, कई कोट भूत प्रय सुकर मेर गाच, सब ते नेर सबू ते दूर, नानक अल पितरै प्रभूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरसुर निवासी, कई कोट जन्म जीव मर, कई कोट बोझो नी फिर, कई कोट बैठ थी गाय, कई कोट काले तक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह पाणा तै तै राखी, नानक सबके प्रभ के हाथ है, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संगत निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्मा पार महंत, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिले प्रभ विनास, कई कोट मंगे सत्संग, पार पुंतन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी रखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट अवतार, कई जुगत किनो विस्तार, कई बार बसर विपासार, सदा सदा एक ओंकार, कई कोट किन्ने बोपात प्राप्त, ब्रह्मा समाध ताकांत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के वे ते सदा निहर को नेत्र, कई कोट नाम रस पी अमर पै सदी जीव, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा समारे, नानक परमेश्वर के प्यारे सलो।

नानक अति सब हार अष्टवें टूटी गणन हर गोपाल सर्दियाँ पे वर्तवाल चकुर चिंता सुन माए तीर्थ वीरता कोई नाय रेमण मेरे सदार जा पवनासी प्रव्या पे आपने किया कछ न होए जैसो प्राणी लोचे कोय तिस बिन नाय तेरे किछ काम गत नाम जापे करना रूपवान तो ना ही मोह है प्रभु की जो सलग कर सो है धन मंता क्या को कर बै सब कोई तिसका दिया दरबै असुरा जे को कहा वे ब्रह्म की कला बिना कहता वे जे को होए बैदा तार ते दिन हर जने गवार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सुजन सदा रोग जो मंदर को थामे थमण तो गुरु का शब्द मणे अस्थमण जो पाखान नाव चढ़ तरे प्राणी गुरु चरण लग्न स्तरे जो अंधकार दीपक बरगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो माह ध्यान में मार्ग पावे तो साधु संग मिल जोत पटावे तिन संतन की बाँचो तूर नानक की अरलो चापूर मन मोर काय बिरलाए प्रुड़ के का लिखिया पाए दो सो प्रभु देव नार त्याग तू ते सिस्तार जो कुछ करे सोए सुकुमान भुला काय फ्री जान कौन वस्ताए तेरा संग लपट रस लोए बुतांग राम नाम जब हृदय माए नानक पासे ती कर जाए जिस वखर को लैन तू आए आ राम नाम संतन कर पाया तज मान ले मन मोल राम नाम हृदय में तो लात के संता संग चाले अब क्या जंजाल धन धन कै सो कोए मुख उजल दर कै सोए व्यापार बिल्ला व्यापारे नानक तां के सतबल हारे चरण साध के तोय तो प्योर साध को अपना जियो साध धूर करो स्नान साधु पर जाए कुर्बान सास उड़ भागी भाई सास संगर कीर्तन गाई बिंगते साधु राखे यार कुन गए मृत चाखे उठ गए संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मृतक को जीवालन हार भुखे को देवते आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए प्रभु के कल न पाए सब की तिसका को करने जोग ते हिंदू सुरहवान हो जब जन सदा सदा दिन रहनी सब तुझ निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दी है नानक से निर्मल थी है जाके मन गुरु की परती तिह जन आवया प्रभु चीत भगत भग सुनिए तै लो जाके हृदय को सच करनी सच ताकी रह सच हृदय सतमु कै सच दिर सच आकार सच वरते सच पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुंते प्रापिन तिसे भुजाए नानिका जिस हुआ सो प्रसा नश्वदि अविनाशी ब्रह्मण मेरा अकमानु की तुभरी त्याग तिथे प्रेण किस को शरण निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गहर कबीर दे सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा ध्यान दल बख्शंद सातरी की चरणी पाओ नानक मन अन्नाओ मनसा पूर्ण शरण जोग जो कृपा सोई हो हरण परम जागण हरो नेत्र हो तिसका मंत्र जाने हो रण ध्रुव मंगल सगर जाके सर्व सुनिए सोक सुनिए करता राज में राज योग में जो गीता में तुम्हें स्वर्ग में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाए नानक तिस प्रकार नियंत्रण पाए जाकि लीला की मनाए सकल देव हरे उगाए पिता के जन्म को जाने पो सकल पुरोहि अपने सोच मत के अंतिम जिंद जनदास नाम ते आवे सह तय गुण में जाको परमाए जन्म रे फिर आवे जाए उचने तिसके सान जस नावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे कराय करंग नाना विद किन विस्तार परुणासी एक ओंकार नाना चल करे किन माए पूर्व पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बण बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाव जब जब जीवे नानक हरनाम नाम कुतारे सगले जंत नाम कुतारे खंड ब्रह्मांड नाम कुतारे सुमृत वेद पुराण नाम कुतारे सुनम के अंत अंत नाम कुतारे अस्पताल नाम कुतारे सगले अकार नाम कुतारे पुरिया सफा नाम के संग कुतरे संसरण कर कृपा से अपने नाम लाए नाम चौथे पद में सो जनकत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल कर प्रधान कर तू सत सत जाकी बाणी सत पुरख साम समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पाद सत करण निर्मल निर्मल जिसे बजाय तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरु ते पाए सत भजन सत बुद सत ते जन जागृत प्रोय सत निरत बुजे दे कोय नाम जब ताकी अदोय आप सत गया सब सत आपे जाने अपनी मित गाते जिसके सिर सो करण हार अपना बूझ करते विचार करते किमित न जाने की है नानक ज्योति पावे सो वरती है विस्मण विस्म भय विस्मा जिन बुझा तिसा स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुरु के भजन पदार्थ लय उदाते दुख हट नार जाके संग तरे संसार जन का सहयोग सोड भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अश्वाई
चरण सत सत प्रसन्नहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत वेखनहार, नाम सत सत आवनहार, आप सत सत सवदारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत जसंता, पूजनहार को सत सब होय, नानक सत सत प्रभु सोय। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण क्रम दिन मूल पछाणिया, जा कर दे विश्वास प्रवाया, तत ग्रंथ मन प्रगटाया, भैते निरपो विसाना, जिस देव जाते समय समाना।

ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रति, ठाकुर के सेवक निर्मरी, ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक प्रभु पालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिजिया प्रभु तारे, नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का परदा डाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाये, अपने सेवक को नाम सिफाई, अपने सेवक की आपद राखे, ताकि कदम कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को कौन पहुंचे, प्रभु के सेवक को ते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दास जिस पगड़ाए। निकी की रीमा कर लाखे, भस्म करे लश्कर को लाखे, जिसका शासन करते आवता कोरा कर जे देख रहा। मान जतन करत भो भांत, जिसके करतव बिरथे जात, मारण राखे अवण कोय, सर्व जियां का राखा सोय। काहे सोच करे रे प्राण, जब नानक प्रभु खिवड़ाणी, बारंबार बार पव जो पिए पिए, अमृत मन तंत्र पिए, नाम तन जिन गुण को पाए, तो इसके शब्द नहीं दिष्टाए, नाम रंग नो नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग, नाम राजो जंत्र विदाने, मन तन नामे नाम सुमाने, उठत बैठ सोत नाम, कहो नाम जन के सदकाम। बोलो जह जे बदन रात, प्रभु ने जन की नींदात, करे भगत आत्म के चाय, प्रभु ने सूरह समाय। जो हो आहो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म सहने, देश की महिमा कौन बखानो, जिसका हुक्म कह के न जानो, वाट पर प्रभु सहजूर है, कौन नाम से जिन पूरे। मन मेरे तिन की ओर ले, मंत्र ने अपना तिन जन दे, जिन जन प्रभु प्रभु शाता, सो जन सर्व थो का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाव मिटावे, अब सयान में सगड़ी चारती, जन की तू सेवा लागे, आमन जान न हुई तेरा नानक, तिस जन की पूजो सत पैरा सलोक। सत पुरख जिन जाने, सतगुर तिसका नाम, तिसका संग सिख उदर, नानक हर गुण गाव अष्टपदी। सतगुर सिक्की कर प्रताल, सेवको गुरु सदयाल, सिक्की गुरु दुरमत मलेरे, गुरु बचनी हर नाम चरे, सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुरु का सिख गुड़ भागी है, सतगुर सिक्का उत्पल सुवारे, नानक सतगुर सिक्को जी नाल समारे। गुर के ग्रह से उजूर है, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु जनावे, हर हर नाम दे सत्य आवे, मन बेच सतगुर के पास, ते सेव के कार जरास। सेवा कर तो है ने काम, तिसको होत प्राप्त, स्वामी अपनी कृपा से आव करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस विश्व है गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गज जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, अनकबार गुर को बल जाम। सर्वधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन में पारमेक, अपने किस परम सहज से अनप लैन जाई, नानक ऐसा गुरु उड़फाकी पाई। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चनगत निर्मरीत, पेट संग्राम गुण लवे, पारपुण की दुर्गे गवे, सुनकर वचन करने खाने, मन संतोख आत्म त्यान। पूरा गुरु खे जाख मंत्र, मृदिष्ट वेख संत, गुण बेअंत किमित नहीं पाए, नानक जिस पाव तिजले मिलाए। जिह वाय कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण भवे, काहूं बोल न पोचत प्राणी, गुंगोचर प्रणु रुबाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ता की कीमत गिन न पाए। अनक भगत बंदन निध करै, चरण कमल हृदय समरै, सतबलहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद है सबल होए अपने। ए हर सुभावे जन कोई, अमृत पी मर सोय, सतपुरु का नायक दे बिना, जाके मन प्रगटे गुणदास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उदय सेवक उदय। मुँह माया के संग नले, मन में रखे हर हरे, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भ्रमो दुख तय ते नासे। तब तुम आये ठंड वर तैन दया तुम नठे भाई, जन्म मरण के मिटन दे से, साधु के पूर्ण उपदेश है। पौ चूका निर्भय वसै, सकल व्याल मंत्र खै नसे, जिसका साधन कृपा तारी, सात संग जब नाम मुरारे, स्थित भाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरुण। निर्गुण आप सरगुण पियो, इकड़ा धर जिन सगली मोई, अपने चर प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जानाई को, सर्वरं तरे को, सोय उत्पुत्र व्यार उपरंग, पर गा साध के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनकबार नानक बुलहारी सलोक।

तानि सारस्वति संत जना मिलकर विचार एक सुन नाम धार कृपा समेत विचार चन कुंज मार तारो करण कर्ण सुप्र करण कर्ण सुप्र सम्राट दृढ़ कर गौ नाम रवत ए तन संचो भगवंत संजन कर निर्मल मंत एक आसरो कोर मन माय सर्व रोग नानक हो जाए जिस धन को चार कुण रतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कुणत बादशाह मे सो सुख साधु संग करी जिस शोभा को करे भली करणी सा शोभा बजर की शरणी अनुकु पावी रोग न जाए रोग मरे हर कदलाय सर्व धन में हर नाम धान जप नानक दर गई प्रवान मन प्रोध हर के नाहे दा दिसाव ते आवे ठाए ताको विघ्न लागे कोय जाकर दिवस हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव भाविण से पूर्ण आस भगत पाया तुम प्रकाश कर जाय सेव नासी कौ नानक काटी जम भासे तत् विचार कह दिन साचा जन्म मरे सो काचो काचा व गुण मिटे प्रभ से व्याप्त अक्षण गुरुदेवी रतन जन्म कहो हे उधार हर हर सिमर प्राण धार अनुको पावन छूटन हरे सिमर साधु वे विचारे हर की भगत करो मन लाए मन पंचत नान खोल पाए संग न चालस तेरे तना तू कै लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुंभर बंता है ते कंते कुंभ कुंभ सनाथा राज रंग मै विसार इंते कव कौन छुटकारा सह स्थिर रथ सवारी झूठा राम झूठा सारी जिंदी है तिस्भुज नभिगना नाम विसार नाम को स्थाना गुर की मतुले आने भगत बिना बोडू बेसाने हर की बात करो मन मीत निर्मलो तुम्हारो ची चन कुमरा खुमन माए जन्म जन्म के लिख जाए आप जपो वराणाम जपाओ सुनत कैद रह कद पाओ सार पुथ सर कुणाओ सत सवाय नान गुण गाओ गुण गाव त्रित्र समाल बिन जाय मैं विखैल हो चंद सुगुनाल सतगुरा सरणाम समाल छाड़ सियाण सगली मन सात संग पावे सचण हर पूंजी संज करो विहार या सुख दरगह जयकार सर निरंतर एको जय कहो नानक जा के मत सगले एक हो जापे को सा लायक सिमर कुमण आय किसके गुण गावण अंत मंत जापे भगवंत एक कोई कर क्रिया पूर्ण पूर प्रभ्या

तब कहते हो तब जब थारी अपन सुन समाद था बैर बिरो के संग माद जब इसका वर्ण चे न जावते तब हरक सो कोक से व्यापते जब अपने आप आप पार ब्रह्म तम वो कांक चोत परम आपन खेलिया वर्ती जा नानी करने हरण दूजा जा हो प्रभु के वलतनी तब बंद मुक्त को किसको करनी जावे करक में पार तब नरक स्वरूप को कौन उतार जन रूपों को असह सुभाय तब शिव सब को किठाय जावे आप आप अपनी जो तर है तब कम निडल कम कतल रे अपने चढ़ तब करने हार नानक सा करक में पार अविनाशी सुख अपने आसन है तय जन्म मरण को का विनाशन है जब पूर्ण करता प्राप्त सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगता गोचर प्रभ एक तब चित्र गुप्त के पोछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन वादे

निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन उपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल सिद्ध लगत कहो के जय जो स्वरूप ही जो संग समावेत है किसे भूक अम त्रिवतावे करण करावन करणे हार नान करते का नय सुमर जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब मत्र कौन बाय बम सदुरवाई जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद देव का कोसी जब अपने आप आवरतारे तो सगन सगन सगन अब सगन का विचार है जय अपन ऊंचे अपन अपनी रहता है कौन ठाकुर कौन कही है चेर विस्मण विस्म रहे विस्माद नानक अपनी का जान वाप जय अचल अचेत विस्माय मक्षे व्याप्त माय अचल अचेत विस्माय आपस को आप है देश तय गुणा का नहीं प्रवे जय के भुवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंतन जय अपने आप आप ते आरा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेन तुझ ते उचा नानक आपस को आपे बहुचा जय प्रच प्रपंच कार तय गुण मैं किन्नो विस्तार पापुनता पई कावत को नर को सुर कुन सावत आल जाल माया जंजाल हूं मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान प्रमाण प्रकार के वख्यान आपन के लिए आप कर देख खेल संकोच जय तो नानक कह जब गत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दो पाक आपे तने उनकी शोभा बणी आपे कौते करें चो जया पे रस भोगने।

सागर निर्भरया तेते अगुण हमारे दया करो कुछ मेर पापू डुबदे पत्थर तारे जी डाकन बराबर तपै पितर वगे काते परणवत नानक हुकुम पछाने सुख हो दिन राति सुख अटल गुरु से।